0: ओ बाला ना लो ये तो
1: ओ जी ओ जी ओ जी पु लो ले बे ओ जी ता पुरा म दु बा लॉजिक से छिन सुबे ngune nang sala chub chu ta
0: re re re
1: chib cha du ga che ta ta le de chu du hu de de da ba be cha ji lu ya cha ji tu al pura
0: lo lo bala
1: ओ अनि टिक जे जेने गे पुरा का शु जिया गे भाग ज म बति जि से
0: लो लो लो बाला
1: हां अन दे दे दे दे दा पु ता दे शु से ल ता गे खला दि सु से दे शु दा खला दि जि सा दा
0: लो लो बाला ने चुक जि रंग को ना गे लब दा छो या छम जि शु
2: जे शि ngal la sa le so ani sa ngi thu yo
3: po rang lam sa shu a ne so nga zro pa she ji de ji bu ji de
2: ཁྱི ཕྱི མམི གསྲང
1: གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང
0: གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང
1: གསྲང
0: ལ་ལ་ཡོ་ཁྱུ་གིན་གང་གི་ངེ་ནང་མི་ཚོ་ཁམ་སང་ཁམ་སང་ཐང་ག་ཐོག་པོ་ཕ་ཡུལ་ལེ་བ་ཡིན་དོ་ཐོག་ང་རང་ཚོ་ལེ་ལེ་ཆེ་ཆེ་ཆུ་ཅིག་ཅེ་ཅིག་ཅེ་ཅེ་ཅེ་དེ་དོ་ཤི་ཚོ་ཡེན་གེ་ཅུ་བུ་ཨ་དེ་ཁ་རེ་ཐེ་དོན་སེ་ཡ་དེ་ཚ་མ་སོང་ཡེ་ཏ་དེ་པ་པ་ད་ཉ་བོ་ཅིག་དོ་ཚོ་ཅིག་ཅེ་ཅེ་ར་ཤེ་ཅིག་ཅེ་ད
1: 두게.
0: 로로 봐라. 쭉쭉쭉.
1: 부. 어제다. 초주 주대 제가 저 신도. 다 대쇼시 계시 쭉 되시.
0: 로로 봐라. 차디사야 제모데 제 차스. 다 이내래 등기 교긴간 대동 체압으로 봐. 초부 망부지기 와라 깨지 샤자 콘조야 레축 쓰지로. 축 쓰지는 구나 봐라.
1: 오다 대 교육 저지 계속 시야가 용 멤버 부. 네야 주주 심사도 왜 안 돼.
0: 로로 봐라. 야면은 발라랑 녀 생각해. 야 죽 쓰지.
1: 다.
0: 녀 저거.
1: 도디나.
4: 잼니토 강타 링슈니. 키탄 파메 파르트 취비 사타티 미발. 키 파무탄 냠도 투거. 파메 참지 진수 킬시. 이난 키기 미수. 카바르 코나. 데니 뎨브티지.